चूम अपाहज है आबे कौसर पर, ये कैसा शोर है जो बेआवाज फैला है, रुपहली छाओं में बदनामियों का डेरा है, ये कैसी जन्नत है जो चौंक चौंक जाती है, एक इंतजार मजस्म का नाम खामोशी, और एहसास बेकरां पे ये सरहद कैसी, दरो दीवार कहां रूह की आवारगी के, नूर की वादी तलक लम्स का एक सफर तवील, हर एक मोड़ पे बस दो ही नाम मिलते हैं, मौत कह लो जो मोहब्बत नहीं कहने पाओ, मौत कह लो जो मोहब्बत नहीं कहने पाओ।